कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ुम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुन वालों, आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 27 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। 27 तारीख अगस्त है, बहन भाई का प्यार का दिन, रक्षाबंधन का दिन है। आप सभी को रक्षाबंधन का बधाइयाँ ही बधाइयाँ बस पेश किया जा रहा है। हॉलैंड देश के अंदर में आज रक्षाबंधन है।
1: तकदीर की बाजी
0: घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325 65 65 60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0332 66 66 11। वेबसाइट होता है radio SBS.nl। उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए। उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। DAB प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं मिडन नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ होलैंड में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों 7:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज जबकि 27 तारीख अगस्त है तो आज रक्षाबंधन का दिन है। कुछ लोग कहते हैं 27 तारीख अगस्त को है, कुछ लोग कहते हैं 28 तारीख अगस्त को है। सुन वालो रक्षाबंधन हॉलैंडीज के अंदर हॉलैंडीज में मनाया जा रहा है आज 27 तारीख अगस्त। पूर्णिमा तिथि के मुताबिक देखा जा रहा है तो उसी समय पर बस रक्षाबंधन उस देश में मनाया जा रहा है। हॉलैंड देश के अंदर में 27 तारीख यानी कि आज मनाया जा रहा है और कहीं कहीं दूसरे देशों में 28 तारीख को मनाया जा रहा है, जैसे कि इंडिया भारत देश में 28 तारीख को मनाया जा रहा है। यह है जिस तरह से मैंने कहा पूर्णिमा तिथि के मुताबिक यानी कि डेटम फॉर द फॉलो मान, उसी मुताबिक बस रक्षाबंधन उस देश में मनाया जा रहा है। तो हॉलैंड देश में आज मनाया जा रहा है और भाई की कलाई में रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधा जा रहा है 2 मिनट फॉर 6 शाम की वक्त में, जबकि 2 मिनट बाकी रहेंगे 6 बजे में, उस समय से बस भाई की कलाई में राखी जो है बांधा जा रहा है। तो आप सभी भाइयों और बहनों को बस एक शुभ रक्षाबंधन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, और ये सुंदर सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा रक्षाबंधन भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार सुंदर सा श्री कृष्ण भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए।

सुंदर सा आरती भजन की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में, और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए, और खास तौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को, सभी भक्त प्राणियों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। यहां तक प्रोग्राम भजन यात्रा रेडियो SBS की जरिए पेश हुआ है। कल शुक्रवार है, कल सुबह 7 बजे से फिर प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। सभी को रक्षाबंधन का बधाइयां ही बधाइयां बस पेश किया जा रहा है। तो चले प्रोग्राम में यहां से रिक्लाम की ओर, रिक्लाम के साथ माउस में समाचार और न्यूज पेश किया जाएगी और फरकीर्स इन फुटबाथ से उसके बाद हमारा आगामी प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपकी बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म ऐलान का गीत भी इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में दिल में हलचल रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शिल्पा राव की आवाज में अभी आपने सुना, सर उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो एस बी एस की। सर ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया जी की आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड का गीत पेश किया जा रहा है।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म दोन दो की ओर एक गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था डोन डू, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई।

साल की आवाज में ये गाना पेश की गए हमें तुमसे प्यार कितना श्रेया जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए कुमार सानू जी की ओर, कुमार सानू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: टू का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। यहाँ से हम आपको ले चलते हैं पुरानी नखमे की ओर, पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम में। एक गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में, किशोर कुमार और लता की आवाज में।
1: मेरी जान
0: द फिल्म आ गले लग जा, आ गले लग जा फिल्म का नाम, किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप तक पेश किया जा रहा है। उसी सुनने वालों है जो गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम को सुनते हैं। चले किशोर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म दूसरा आदमी, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है।

062-66-11. और इसी टारगेट नंबर पर आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी आप कर सकते हैं। सुनने वालों, आपको मालूम रहे कि ये रविवार 6 तारीख सितंबर कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं।

वेबसाइट होता है i-tickets.com, उसी वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं और मिल कर रहे कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का लाइव कॉन्सर्ट देखेंगे। सोमवार 6 सितंबर आफास लाइव आम्स्टरडम शहर के अंदर में। बीते हुए वीकेंड 3 रोज लगातार मिलन समर फेस्टिवल था, बहुत से लोग 3 रोज लगातार गए मिलन समर फेस्टिवल में। कुछ सुनने वालों बस सवाल किया है या कहाँ है हमारा रेडियो SBS का ऐप पर कि इस वीकेंड घर पर रहेंगे, इसलिए कि कुमार सानू का टिकट खरीदा है। इस वीकेंड में घर पर रहेंगे, थोड़ा घर पर रिलैक्स करेंगे।

अनुराधा पोटवल का कॉन्सर्ट जाकर देखेंगे। तो आप जाएंगे तो जरूर मुलाकात होगा। और सही बात है, बीते हुए वीकेंड तीन रोज लगातार मिलन सुमर फेस्टिवल था। इस वीकेंड थोड़ा घर पर भी आराम करना चाहिए और उसके बाद वीकेंड जो आ रहा है, मिलकर कुमार सानू और अनुराधा पोटवल जी का कॉन्सर्ट देखेंगे। चले, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। पुरानी फिल्म आदमी का गीत पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में गाना बस पेश की गई फिल्म आन मिलो सजना, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है।

रक्षाबंधन के मौके पर ये गाना बस पेश की गई है और खासतौर पर सभी भाइयों सभी बहनों के लिए ये गाना बस पेश की गई। आसरा उम्मीद है सुनकर और बेहद

रेडियो SBS की जरिए रक्षाबंधन के मौके पर आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में कुछ गाने नखमे पेश किया जा रहा है। सभी को बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है रक्षाबंधन के मौके पर। आज हॉलैंडीज के अंदर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, कहीं कहीं दुनिया में कल मनाया जाएगी, कल 28 तारीख अगस्त, लेकिन आज 27 तारीख अगस्त है, तो आज हॉलैंडीज के अंदर रक्षाबंधन बस

रक्षाबंधन के मौके पर गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611। मत भूलना आने वाले रविवार 6 तारीख सितंबर आफास लाइफ आमस्टरडम शहर के अंदर में कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। हजारों हजारों लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं। आपने अपना टिकट नहीं खरीदा है तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए वेबसाइट i-ticketspoon.com।

पत्रों मीठे, खूबसूरत नखमे, रक्षाबंधन के मौके पर जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों को काफी और बेहद पसंद आते हैं। सभी को बधाइयां ही बधाइयां एक बार फिर से पेश किया जा रहा है रक्षाबंधन के मौके पर। चलिए अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुन वालों, एक गाना और होगा, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर। तो चले मिलकर अब की बार रक्षाबंधन के मौके पर ये गाना पेश किया जा रहा है। उसके बाद प्रोग्राम में खबरें होगा, खबरें के बाद और भी पुरानी नख्मे आपकी सेवा में पेश किया जाएगी, तो जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में ये

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। असरों मीठे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है और रेडियो SBS की जरिए जो सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। लता के बाद मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

जाना बस पे इसकी गई है। अब की बार मुकेश जी की आवाज में फिल्म कहानी किस्मत की है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कहानी किस्मत की। चलिए आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज की इस पुरानी नखमे की ये खास प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

The Nightingale of Asia, आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03025656560। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है किशोर कुमार एन।

मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। आई द फिल्म कर्स 1980 का फिल्म 1980 का खास फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। मुकेश एन लता आपकी बार प्रोग्राम में। ये शमा ये खुशी बोलो जी बोलो जी। मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

ये शम ये खुशी बोलो जी मुखी सौर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी नखमे पुरानी फिल्में गाने आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। चलिए प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है सभी हिट गाने सभी हिट सॉन्ग्स इसी रेडियो स्टेशन की जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। ये तोहफा तुम्हारे प्यार का, आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए है। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार होगा, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सॉन्ग बाय किशोर कुमार।

0: किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश की गए गोरी ओ गोरी। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl है। किशोर कुमार के बाद मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: खुद ही इन गहरी घटाओं से बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
2: अरे जा जा
3: जा जा, जा।

टेम सुबह मुस्कुराती है, वो शोला हो के चिंगारी मचल कर नाच जाती है, तो धड़कते दिल से मेरे मधु भरी आवाज आती है। ए, ए, ए, ए, जा जा अरे जा जा जा जा जा रे जा।

से शराबी नैन के प्याले के दिल का हाल कह देते हैं दोनों ये हिम्मत वाले। नहीं डरते किसी से जीत कर भी हारने वाले, कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले। जा अरे जा जा जा रे जा।

0: En nu reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम
2: हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.net। चलिए फिल्म आवारापन जुजाना की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। अब आप बोली चलते हैं

पेश की गई है रेडियो वेस्ट पे इसकी सरी अभी आपने सुना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अभी और रेडियो वेस्ट पे इसका प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 565

तेरे मित्र की आवाज में। रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए।

सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार तुलसी कुमार NKK की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। तुलसी कुमार NKK प्रोग्राम में

तुलसी कुमार एन के की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू की आवाज में गाना, और अब की बार फिल्म का नाम होगा इंडियन बाबू।

फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों काज के लिए। टेलीफोन नंबर है 03-2-65-65-60-60। सोनू निगम एंड अलका।

पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना

Jak Nika Ure, Udit Narayan ki avans me ye, jana bas program ye, peace ki gaye aap sabhi, aur sabhi sunne walon ki seva mein. चले आपकी बार सोनू निगम और सपना मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है हिम्मत।

में इसके जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना लाइव के जरिए ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। कुमार सानू एंड अलका।

प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और अनुराधा पोटवल की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम हम तुम्हारे है सनम।

जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए हम तुम्हारे है सनम फिल्म का नाम अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नजर फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में KK एंड सुनिधि चौहान की ओर हम आपको ले चलते हैं।

uit de film No Entry. KK en Sunidhi Chauhan की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में. चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है.

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका जी के आवास में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते
1: हैं।
0: आवाज में जिंदगी एक छाव फिल्म का नाम है और उसी फिल्म से ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। तार के नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में आपकी बार ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और कुमार सानू जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और चलिए आज की इस प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अनवर हुसैन एन चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में ये गाना।

सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। जब भी ये दिल उदास होता है, मोहम्मद रफी एंड शारदा।

रफी और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब आपको ले चलते हैं गाना जो किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार प्रोग्राम में

0: किशोर कुमार के आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अभी नौ रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं संगीत भरी स्टेशन जो शेरुत्रेख से पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर।
1: पूछो

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस पेश की गई पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म कठपुतली, फिल्म कठपुतली का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुन वालो, आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर 03-22-65-65-60 है और इस टेलीफोन नंबर पर तार का नंबर पर 24 घंटा लगातार आप तार कर सकते हैं। 24 भी पर्दा अखबार एक बार होता है आपकी सभी और सभी कामों काज के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे गाना जो पेश किया जा रहा है यशुदास की आवाज में। यशुदास की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

यसुदास की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में यसुदास के बाद गीता दत्त की आवाज में फिल्म बाजी का गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए। बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का ये प्रोग्राम सालों से बस सुनते हैं, जो खास तौर पर शहर उत्तराख हॉलैंड का सबसे खूबसूरत शहर से बस पेश किया जा रहा है। फनाउट हट फन नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड हॉलैंड के बीच से ये आवाज निकलते हैं, और वो भी सालों से सुन वालों ये रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम को सुनते हैं। रेडियो SBS संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम। हम आपको ले चलेंगे एक गाना की ओर मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, और फिल्म का नाम है गूंज उठी सहनाई। जीवन में पिया तेरा साथ रहे,

साथ रहे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, गूंज उठी सहनाई फिल्म का नाम और उसी फिल्म का ये काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सिनेवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले मोहम्मद रफी की ओर, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। शेरों की बादशाह और संगीत का फरिश्ता मरहूम मोहम्मद रफी।

सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिट इज यू आर जे अंशुलि रामलाल, दू फा हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस गजल दूर सोनू निगम एंड अल कयाचनिक क्वाम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दाग गजल दूर प्रतिभा सिंह खैर मंगदे।

तुम क्या जानो दिल करता तुमसे कितना प्यार वास आए द फिल्म आशिक कैन आए द फिल्म हम हो गए आपके इस het volgend liedje in het programma Giet om Kilher via Radio SBS. Gezongen door Kumar Sanu en Elka Yachnikomt. De titelsong van de film Hum Hoge Aapke.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागी।

एल्बम बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट
2: जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एन कॉम्ट आउट द फिल्म वक्त। गाँव दा फेदर मैट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजों दो रेखा भारद्वाज कॉम दोरी टूट गईया।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आखिरी खत से। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में।

फिल्म मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज में परम सुंदरी, और अब आप सुनिए रहना है तेरे दिल में से। सच कह रहा है

लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचक कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है, जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चढ़के।

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

भर दो झोली मेरी वास गसोंद और अदनान सामी खान है क्वाम आयो द फिल्म भजरंगी भाईजान अत फोहत लीजिए एन अत प्रोग्रामा गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इस गसोंद और शान एन अलका याचनिक कॉम्ट आयो द फिल्म तलाश एंड इट इस तूने कहा जब से हाँ

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वाज आउट द फिल्म आशिकी एंड इज गेजोंग डोर उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल. Het volgende liedje in het programma Geet om Kelleher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churia komt Swaggy Churia.

मुझे साजन के घर जाना है। इसका सॉन्ग और अलका याचिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर ने रूला एंक वाम आई द फिल्म लज्जा। Het volgende liedje in het programma Gieton Kelleher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Bas Ik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu, jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में. गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां.

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।